ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਪਣ ਰੱਖੀ ਸੁਰ ਜੋ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗਮਾਸ਼ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਆਰਸਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਧਮਾਂ ਬਰਸੂਰਾ ਗਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਣ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਵਣ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਣ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਹੀ ਹੈ ਬੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਨ ਜਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣ ਜਿਵ ਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤੇ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੋਧ ਵਿਣ ਸਿਧੀ ਕਿਰਨ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕਰ ਆਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਸ ਵਾਰ ਨਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਊ ਆਖਣਿਓ ਕਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤਭੁਖੇ ਖਾ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਰ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿਨ ਦਾਰੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੋਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੜਿਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਸ ਨਰਾ ਗੁਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋਂ ਰਤਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋਂ ਗੁਰਪਾਸ ਬਿਨੋ ਕਰੋਂ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਗਨ ਜੰਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਤੋਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਤਨ ਤਨ ਸਾਸਨ ਜਿਤਾ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾ ਨਾਨਕ ਨਾ ਪ੍ਰਗਾ ਰਾਹ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੇਂ ਹੁਦਮ ਜਾਂ ਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਤਾ ਕਾਰਿਜ ਕਾਗੇ ਘਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੂਰ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸੇ ਸਿਰਿਨ ਸੰਭਾ ਹੇਠਾ ਕਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਉੜੇ ਉੜਾਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤੇ ਪਾਸੇ ਬਹਰੇ ਸਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਜਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਬਨ ਦਾਨ ਦਾ ਸਸਦਾਨ
ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत ना पारावरिया। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख नजरा पुनर्ण गामा गाम पारा, सब त्यावें तो जी हर सचे सिजनहारा, सब जी तुम्हारे जी तू जी आका दतारा, हर दया वो संत हो जी सब दूब सारनहारा, हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा, तू कड़ कड़ अंतर सर्ब निरंतर जी हरे को पुरख सुमाणा, एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज वडाणा, तू आपे दाता आपे भूता जी हो तुद बिन और ना जाना, तू पार ब्रह्म बेहंद बेहन जी तेरे क्या गुण आ बखाणा, जो सेवै तो जी जन नानक तिन करबाणा, हर दयावे त्यावे तो जी से जन जुग में सोवासी, से मूद पहे जिन हर त्याया जी, तिन टूटे जम की फासी, जिन निर्भाव जिन हर निर्भाव त्याया जी, तिन का पाओ सगवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, त्यारा रूह समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नान तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता, तेरे पग तेरे पासलां तो जी अनक अनेक अनंता, तेरे अनक तिन करे हर पूजा जी तब तापे जब बेअंता, तेरे अनेक पड़े बहु सिमर सा जी कर क्रिया खट कर्म करंता, से पग भजन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुर परम पर करता जी तो जे वडवर न कोई, तू जो जो एको सदा हदा तू एको जी, तू नेचर करता सोई, तुदे आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करेंस होई, तुदे आपे से सब पाई जी, तुदे आपे से सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानू आसा महला चौथा, तू करता सचार मैडा साई, जो तू पावे सोई तीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, साब तेरी तू सबनी ते आया, जिहनो कृपा करे तिन्ना अमृतन पाया, गुरमला दमन मुकवाया, तोदे आप विछोड़िया आप मलाया, तू दरियाओ सब तुझी माए, तुझ बिन दूजा को ना को तुझ बिन दूजा ना कोई नाए, जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण साधी आव खाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जावर न कोय, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमंग प्रगट होए आसा, महला पहला तित सरवले भैले नवासा, पानी पाव तिने किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तैं डूबी अले, माने न चेस मूड मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तो नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तिर किते ना काम, मिल सा संत पाई केवल नाम, सरन जम ला पवजल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं
कावे वाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दह रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा ताव चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोसवे तुम कावो आप दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक से सबे करतारा मोर अच्छा नहीं कर दे करिए सबैर को आस नरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर बहन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई और ना त्याऊ जो बचाऊ तुम थे पाऊ सेवक से हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे अभरी है मरण काल का त्रास नवरी है हो जो सदा हमारे पच्छा सिरिया तो जो करियो रच्छा राह लियो मोहरा कणहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दास कंता काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए करवे प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देवता जशन अपजायो आद्य अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सर पर जाज ने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सो दियो सदरन को पल मोहब्बत कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशान चीटी ते कुंचरे अस्तूला सा पर कृपा दृष कर फूला संतन दो पाए ते दुखी सो पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशान कड़ कड़ के पड़ पड़ के जान जब उदकर करां कर तारा पर जातर तब दे अपारा जब आकर कर तो हो कब हूँ तुम में मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन से सब तारे आबे अपनी बोझ उचारे तुम सभी तेरे तन आलम जान बे पे तेरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नीलन आद संभ ताका मूड चात पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पान न मानत महामूड कह पे न जानत महादेव को कै सदाश निरंकार का चिन्हत न भेव आभ अपने बुद्ध है जेती बरनात पेन पेन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बैसा प्रथम संसारा एक रूप अनु स्वरूपा रंग प्यो राव कहीं भूपा अंडा जहर से तजकीनी उत बज खान बहोर राच दीनी कहूँ भूरा जाऊँ बैठा कहूँ सिम प्यो शंकर कैठा सरी से दिखाए चंबव आज गास्रु से अंबव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार सिख संगरो दूर जते उठुत पाता सगल मलेश करो रणगाता जे आतु सब सर नहीं परे तिनके दुष्ट दो तो है मरे पुरख जमन पा परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट हरी टरे तद काला किरबाद्र तन जाए न हर हो ताके ताव तनक मैं हर हो रेद सिद कर्म सब होई दो सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल भांते ते उभारा जे नर नाम त्यारो कहा दार दूर दो तेरा खड़ग कहत मैं शरण त्यारी आप हाथ दे लिहो अबारी सर्व ढोर मोहो सहाई दुष्ट दोते लियो बचाई सवैया पाए गए जब ते तुम रहे तब ते कहूँ आ तरे नहीं आने राम रही पुराण कुरान ने कहे मत एक न माने सिमरत शास्त्र बे सब है बहुपेद का मेघ न जाने
ਸ੍ਰੀ ਅਸਮਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਹੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹੋ ਸਭ ਤੋਏ ਬਖਾਨੇ।

रहे। बैनवंत नान गोर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुदावणी महला पंजवा, थाल विचन वस्तु पइयो, सात संदोह विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पहयो, जिसका सब सदारो, जे को खावे जे को पूंछे, तिसका होय दारो, एहे वास्तई न जाई, नेतन राख उतारो, तम संसार चरण लगतरी है, सब नान ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैं न जो कितोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई, तरस पिया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया, तरस पिया।

साधुजना की अचरज कथा श्रवरी साध के संग मुख उज्जवल होत साध संग मन सगली को होत साध के संग मटे अपमान साध के संग प्रकट सो ज्ञान साध के संग भुजे प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा मरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ मह सुमानी साध के संग गोचर मिलाए साध के संग सदा पर फुलाए साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पहुंचा साध संग हो सबकी रेन साध के संग मनोहर बहन साध के संग नकद हूं तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीर साधु के संग महापनीर साध संग के सोनी पैर साध के संग नविंगा पैर साध के संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं होताप साध के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबू तावे साध के संग सदा सुख पावे सत्संग बसद गोचर लहे साधु के संग जर सहे साध के संग बसे तन उचै साधु के संग महल पहुंचै साध के संग जड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पै नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध के संग सब कुल उधारे सत्संग साजन मीर कुटम निस्तारे साधु के संग सोतन पावे जिस तन ते सबको वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सबल जनम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पेड़ तो होत निहाल साध के संग कलूक हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यमां से हिला साध संग बिछड़ धर्म हिला जो इच्छे सो ही फल पावे साध के संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिस बस है नानक गुरु साध सुन रस है साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरे साध संग सर पर निस्तर है साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संग कर कर डीठा साध संग पया क्याकारी साध संगत पही हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा भेद न जाने ये ता सुनते तब ख्याने साध की उम्मा दे गुण ते दूर साध की उम्मा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूझते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए और न पेखे एक बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अशवरी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग जैसे सूर सर्व को सोग ब्रह्म ज्ञानी के दिश समान जैसे रंगला कोला के तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग जैसे सूर सर्व को सोग ब्रह्म ज्ञानी के दिश समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेग जो मसुदा को खोदे को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एक गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे धर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मिथर सदृ समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊजते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिश अमृत भरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर राज ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंदा ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी ओम बोध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास
ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का भेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कसया ना जाए जाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त ज्योत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उर तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमुख निम ठाकर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, परत रूप न पेखे नेतर, साधगी टहल संत संगेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखया पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पाई दोख ते रह, नानक कोट मदे को ऐसा परस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए नेह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नि बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर हो कृपाल, आप जड़े अवरा नाम जपावै, नानको वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिन से सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मलख होवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नतनीर, मन तन अर्पे विष्णु प्रीत, हर के चन हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडो जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म में सोधे, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जाग जीवे, हर की कथा हृदय बस आवे, सो पंडित फिर जो न आवे, वे प्रण सिमृत पूजे मूल, सुख में जाने अस्तूर, चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतार है, पस प्रेत मुक्त पाथर को तार है, सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत के देना पाइये धर्म, नानक जिस मिले तिस लिखिया तोर कर्मा, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम दस नजरी आया, दास दसंतन पाए तन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोच जी पर है, सगल संगात मुदास, ऐसी युक्त नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म ही तावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हरक तैसा उसोग, सदा नंत नहीं वियोग, तैसा सुन तैसी उस मटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा रजान, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जिद कर राखे तैसा ते नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रपावे सोई भनोग, पसरो आप हो नंतरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग, जैसी मध्य तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जाना, अंत न पार हवार, नानक रचना प्रभ रची, बहु भेद अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट भेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारा है, कई कोट कव कहा विचारा है, कई कोट नवतन नाम ते आवै, नानक करते का अंत न पावै, कई कोट पे अभिमानी,
कई कोट आंध्र ज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट पे घात मनिकोर, कई कोट पर दर्भ कोहिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम आए, कई कोट पर देह परमाए, जे तित लावो ते तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सचसी जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर उपाए, कई कोट पाथर बिरख न बिजाए, कई कोट पौन पानी बेसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नखत्तर, कई कोट देव दान इंद्र सिर छतर, सगल समगरी अपने सूह तारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राज तामस साधक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण दीवे, कई कोट जाके नृपिसाज, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाज, सब ते नेरे सबूं ते दूर, नानका बलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पताल के वासी, कई कोट नग सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मर है, कई कोट बोझो नहीं फिरा, कई कोट बैठ सी खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चंद, जय जय पाणा तय तय राख, नानक सब कृपा के हाथ है, कई कोट पय बैरागी, राम नाम संग तिल निवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म है पर ब्रह्म लहनते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको है आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई युग कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बोपात, प्रभ ते हो प्रमह समाद, ताका अंत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगाद, कई कोट तात के बेते, सदा निहारे को नेतरे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सर सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गावे, आत्मरा सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोहे, नानक तिस बलिहारण जल थल मैयल सोए, अशबरी करण करावन करने जोग, जो तुस पावे सोई होग, किन में ताप तापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार तार रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक साहब मेहरिया समाई, प्रभ पावे मन हुगत पावे, प्रभ पावे ता पाथिर त्रावे, प्रभ पावे बिन साल तिराखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पद उधार है, आप करे आपन बेचारे, दोसरिया का आप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहो मनुख से क्या होए आवे, जो दृष्टि पावे सो ही करावे, इसके हाथ होए ता सब किश ले, जो तिस पावे सोई करे, अनजानत बिखिया में रचे, ये जानते अपने आप बचे, पर मैं पूला दर्द सितावे, निमख में चार कुंट फिरे आवे, कर कृपा अपनी भगत दे, नानक ते जन ना मिले, खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु ना आवे, तिस तत्काल दर्शक प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा ना गने जगदीश, जो पिंड सब तिसकी रास, कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनते आप नाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल ना ही इस हाल, करण करावन सर्व को नाद, आज्ञाकारी बपराजियो, जो तिस पाए सोई फुन थियो, कबू ऊंच नीच में बसे, कबू सोग हरख रंग हसे, कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू उब काल प्याल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आ मिलावनहार, कबू नृत्य करे भोपान, कबू सोए रहे दिन रात, कबू महाक्रोध बिकराल, कबू सर्व की हो दरवाल, कबू होए बहे बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा, कबू आपकी रिद में आवे,

अविनाश मंत्र नाम रते इक रंग सदा बसे पात ब्रह्म के संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गबन पाए विश्राम नानक प्रभ कै साध कुरबान। श्लोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपति जिसके अंतरराज अवमान सो नरक पाती हो बत सोवान जो जाने मैं जो बनवंत सो हो तो विष्ठा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहुजोन परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगे सुख पावै धनवंता होय कर गर्भावै तिन समान कह संग न जावै बहु लश्कर मनुख ऊपर करयास पल पीतर ताका होय बिनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होय जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे अवमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे होतारे स्वर्ण पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर भिरे अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवे हर दरगाह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भला ही निकट नहावे सर्व की रेन जा का मन होए कौ नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब ये जाने मैं किस करता तब लग कर जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल ना ही चीत जब लग मोह मग्न संग माए तब लग धर्म रह देश जाए प्रभु कृपा से बंधन टूटा गुर प्रसाद नानक हो छुटा सहस कटे लाख को उठतावे त्रिपत न आवे माया पाशे पावे अनक भोग बिखया के करे नह त्रिपतावे खाप खाप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरते सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आपा प्रभ सोए जोश किनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कह संग बुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सद ही रिया सुमाए आप उपदेश से समझे आपे रजिया सब कह साथ आप किनो अपन विस्तार सब किश उसका ओ करने हार उसते भिन्न कहो किश होए थान थनंतर एक कैसे होए अपने चलत कर आप करने हार कौत करे रंग पार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किन बखयानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरुण बखयानी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरण

संत दुखी गाता हो गुनाहे, नानक संत पावै तायो भी गत पाहे। संत का निंदक मां अतताई, संत का निंदक खिंटिगन न पाई। संत का निंदक मां हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदको सर्व रोग, संत के निंदको सदा बिजोग। संत के निंदा दोख में दोख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को ढान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै। संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी। संत का दुखी जन्म है मरै, संत की दुख न सुख ते टरै। संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावै ताले मिलाए। संत का दुखी अदबी ते टूटै, संत का दुखी किस काज न पहुँचै। संत के दुखी को उद्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै। संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो साथ बिना मृत की लोथा। संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीजा पे ही खाहे। संत के दुखी को अब न रखन हार, नानक संत पावे ताले उबार। संत का दुखी उंबल लाए, जो जल भी हुन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बाड़ तेल खेत में दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रैत, संत का दुखी सद मिथिया कैद। किरत निंदका तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दोष न तिस जय कोए, जैसा पवे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्त करो दिन रात, तिसे ते आवो साज गिरात। सब शिवरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना के लब करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। श्लोक तजो सियान फसुर जन हो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानो कीटक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान। जिसके दिए रे अकाए, बौरनत न लगे आए। मारे राखे एको आप, मानो के किस ना ही हार। तिसका हुकुम बूझ सुख होए, तिसका नाम रंग कंठ पर होए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस मन में कर निंकार, कर मन मेरे सत बिहार। निर्मन रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेग ठाकर का रंग, सात संग बिन से सब संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म सर्वण हर कथा, हर दरगा नानक उज्जल मथा। बड़पा गीते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, सेतन बंत कनी संसार। मंतन मुख बल बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक बिशाने, इत उतकी ओ सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिने निरंजन जानया। गुर प्रसाद अपने अब सूझै, तिसकी जानो तिस ना बूझै। साध संग हर हर जस कैद, सर्व रोग ते हर जन रैद। अनदन कीर्तन केवल बखियान, ग्रिस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर से जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जे प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किस दे डरे। जैसा सा तैसा तिस जाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदर सोदर सोदर सीजिया, गुरु प्रसाद तत् सब बूझिया। जब देखो तब सब कुछ मूल,
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਹਸਤੂਲ, ਨਹਿ ਕਿਸੇ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਸੇ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦਿਸ਼ਟ ਅਨਦਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ, ਅਣਖ ਜੁਗਤ ਰਜ ਥਾਪ ਉਥਾਪ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਾਹੀ ਕਿਜ ਖੰਡ, ਤਾਰਨ ਤਾਰ ਰਿਹੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਲਖ ਉਪੇਖ ਪੁਰਪ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਭਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੇ ਤਿਨ ਮੰਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲੇ ਉਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੜ ਪਾਗੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੇ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਸਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜ ਤਿਸ ਮਹਿ ਸਮਾਏ, ਵੇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਣ ਆਏ, ਆਪਸ ਕੋ ਅਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਸਲੋਕ

कछु न होए, जैसो प्राणी लोचे कोए, तिस बिन नाही तेरे किस काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभु की जोत सगल घट सो है, तनवंता होए क्या को गर्व है, जहाँ सब किश तिसका दिया दर्व है, असु राजे को कहावै, प्रभु की कला बिना कहता वै, जे को होए बह दतार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुरु प्रसाद तुटे हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग, जो मंदिर को थामे थमन, त्यो गुरु का शब्द मने अस्थमन, ज्यो पखान नाव चढ़त रह, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विकास, ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै, तिन संतन की बांशो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरह काहे बिल लाइय, पूर्व लिखे का लिखे आ पाइय, दुख सुख प्रभ दे भणहार, अवर त्याग तुत से चितार, जो कुछ करे सोई सुखमान, फूला काहे फिरे अजान, कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जब हिरदे माहे, नानक पासे ती कर जाहे, जिस वखर को लहन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अमान लेहु मन मोल, राम नाम हिरदे में तोल, लाद खेब संता संग चाल, अवर त्याग बिखया जंजाल, तन तन कहे सब कोय, मुख उज्जल हर दरगा सोए, ए वपार बिरला वपार है, नानक ताके साध भलिहार है, चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा बड़ पागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है, अनक विघ्न ते साधु राख है, हर गुण गाय अमृत रस चाख है, ओट गही संता दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देव दियादार, सर्वदान जाके दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किश तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग, जब जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊज निर्मली है करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल सिया, जाके मन गुर की प्रतीत, ते जने आवे हर प्रभचीत, भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय एक होए, सच करनी सजता की रैत, साच हृदय सत मुह कहत, साची दे साचा अकार, सच बरते साचा पसार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता, श्लोक

0: अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राग मानो की तू प्रीत त्याग तिसते परे नहीं किस कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे जाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल भगशंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक के मन ए अनराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो गुरु पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र भोर तिसका मंत्र न जाने होर नंद रूह मंगल सज जाके सर्व सुख सुनिए करता के राज में राज योग में जोगी ता मैं तपी श्री कृष्ण में भोगी त्याय त्याय भगता सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाके लीला की मेहत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम ते आवे से ते गुण में जाको फरमाए जन्म मरे फिरे आवे जाए ऊच नीच तिसके स्थान जदा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे एक रंग नाना बिजकी नो विस्तार प्रभु अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिनमाए पूर रहे पूरन सब ठाए नाना बिज कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीने जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत भेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे गास पताल नाम के तारे सगले अकार नाम के तारे पुरियां सब पवन नाम के संग उधरे सुन सरवण कर कृपा अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गद पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब महे समाणी सत कर्म जाकी रजना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बजाय तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत वजन साधु उपदेश सत ते जन जाके हृदय प्रवेश सत नृत पूजे जय कोय नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिष्ट तो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वृतिया विषम विषम पय विषमार जन बूझिया तिसे आया स्वाद प्रभु के रंग राज जन रहे गुरु के वचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सो बड़ पागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पे सच अश्वरी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सब तारी आपे गुणे आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता भूजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मानिया करण ग्राउन तिन मूल पछाणिया जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपो होए पसाना जिस तिव तिस मह समाना बस्त मैले बस्त गडाई ताको भिन्न न कह ना जाई बूझे बूझण हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक के मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राखे निंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारै नानक सो सेवक साथ साथ संवारै अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर रखै अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपद रखे ताकि गत में कोय न लाखे प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दिख प्रगटाया नीकी कीरी में कल राखै, पसम करे लश्कर कोट लाखै, जिसका साथ न काट दे आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जन करत बहुपात, तिसके करत बिरथे जात, मारे न राखे अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभु लख बडाणी, बारम बार बार प्रभु जपिए, पी अमृतिए मन तंत्र पिए, नाम रतन जन गुरमुख पाया, तिसके और नाहीं दिष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जंत पतानै, मन तन नामे नाम समानै, उठत बैठत सोभत नाम, कौ नानक जन के सदकाम, बोलो जस जे बादन रात, प्रभु अपने जन की नींदात, करे भगत आत्म के चाहे, प्रभु अपने सो रहे समाए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुकम पजाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो, आठ पै प्रभु पसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लहे, मन तने अपना तिन जान दे, जन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी सरन सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर से आनब सगली शार, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सत पुरख जन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवो को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़पागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै, गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को करकश ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन वेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करै, नानक सो सेवक गुर की मातले, बिस बिसवे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाव, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्वनिधान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ भरम, सह सियान लया ना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइया, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परस चरण गद निर्मल रीत, पेट संग राम गुण रवै, पार ब्रह्म की दरगाह गवै, सुनकर भजन करने अकान, मन संतोख आत्म पति अन, पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे से लहे मलाए, जे बा एक उस्तद अनेक, सत पुरख पूरन भवेक, काहू बोल न पहुंचत प्राणी, गम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन्हें न पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सत बलहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, ए हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमृत होए, उस पुरुष का ना ही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच बदे सेव को दे, मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक परगासे, नानक परम बहु दुख ते नासे, तब तुम्हें ठांड बरताई, नंद भया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेश है, साधु के पूरन उपदेश है, पहुँचू का निरपो होए बसे, सगल व्याध मन ते खै नस है, जिसका साधन कृपा धारी, साध संग जब नाम मरारी, थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवण, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोई, अपने चित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा ना ही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगा साध के संग रज रचना अपनी कलतारी अनकवार नानक बलहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजना बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक ए धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम धार अवरो पासा मीत बिसारो चरण कमल निज मह उर तारो करण कारण सो प्रभ समरथ जड़ कर गहो नाम हर वथ ए तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आद राखो मन माए सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस को नित बांशे मीर सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर निधान मैं हर नाम निधान जब नानक दरगह परवान मन पर बोधो हर के नाए दर तावते आवे ढाए ताको बिघिन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास जित कर जाए बसे अवनाशी कौ नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा कौन मरे प्रभ सेव आप जाग सरन गुरुदेव इम रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण धार अनको पाव न छूटन हारे सिमर साधत भेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सो तुमीत कोटा भर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार असस्ती रस असवारी झूठा डंब झूठ पसारी जिन दिए दिस बुझे ना बगाना ना विसार नानक पछताना गुर की मातूले एयाने भगत बिना वो डुबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जपो अवरा नाम जपावो संत कहत रहत गद पावो सार पूज सद हर को नाओ सह सुभ नानक गुण गाओ गुण गावत उदर समैल बिन सजाए होमे बिख फैल होए अचिंत बसे सुख नाल सास गदा सर नाम संभाल शाड़ स्यान सगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी संज करो बिहार इहां सुख दरगा जयकार सर्व निरंतर एको देख को नानक जाके मस्तक लेख एको जापे को सला एक सिमर एको मन आ एक इसके गुण गावन अंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक
1: एक रात प्राशद गए मन तन अंतर एक प्रभ रहता गुरु प्रसाद नानक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानकी प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपादी जाजक जान जाचे प्रावधान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तुहर पार मिर सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सा सब तुम त्यावो चरण कम सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की निर्नीत एक ओड़े को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दिस मां सुख होए अरस पावे बिरला कोए जिन जाखे आसे जन त्रिवतन है पूर्ण पुर नहीं डोलन है सो पर परे प्रेम रा रंग उपजे चाओ साध के संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगान दिल विलाग बड़पागी जपया प्रभ सोए नानक नाम हृदय सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल लही जन को प्रभ होए दयाल सेवक की नो संध्याल बंधन काट मोजन पया जन मन दो परम गया ऐश पुनी सरदा सा प्रूरी राव रिया सत्संग हजूरी जिसका सत लिया मलाए नानु भगति नाम समाए ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਰੇ ਜਿਨ ਸਾਗੇ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਰੇ ਅਗਮਨ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਬਗਤੇ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਜਮ ਜਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਡ ਹੈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤਤਹਿ ਬਜਾਇਆ, ਪ੍ਰਭਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਏ ਕਾਮ ਹੋ ਆਨ ਤਿਆ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮ ਸੋ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੁਰ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਭਗਤ ਭਰੇ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ, ਮਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋ ਸੀ ਸਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੋਹ ਨਿਰਨਾਮ, ਬੁੜ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਸਰਾਮ, ਸਲ ਦੁਖਾ ਹੋਵਨ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ, ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਚਾਓ, ਮਨ ਅੰਤਰੇ ਸਵਾਓ, ਨੇਤਰੋ ਪੇ ਦਰਸੋ ਗੋਹੇ, ਮਨ ਵਿਕਸੇ ਸਾਹ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਭਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗ, ਵੇ ਭਾਤੀ ਜੇ ਕਰਮੇ ਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਮਾ ਗਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਭਗਤ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਕਟਾ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਦਿ ਪੁਰ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਹੇ ਪਨੀਤ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨ ਹੀਤ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਜਾਨ, ਨਾ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਸਰਬ ਬਿਖੁੰਡ ਮੁਖਦ ਮੋਹ ਪਾਏ, ਇਕ ਨਿਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਨਕਰਾਜ ਪੋ ਬੜਿਆਈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਏ, ਪੋ ਪੋ ਚਨਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ, ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਤਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ, ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਾਬ ਆਕਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦਿਸ਼ਟੇ ਤਾ, ਪਾਪੋਂ ਦਾ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ, ਜਬ ਤਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਦ, ਤਾ ਬੈਰ ਬੋਕੇ ਸੰਗ ਮਾਤ, ਜਾਬ ਇਸਕਾ ਬਨ ਚੇ ਨਾ ਜਾਵਤ, ਤਾ ਭਰ ਸੋ ਕੋ ਕਹਿ ਬਿਆਪਤ, ਜਬ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾ ਮੋਹ ਕੈ ਤਾ ਮੋਹ ਕਾਂ ਕਿਸ਼ੋਵਤ ਪਰਮ, ਆਪਨ ਖੇਲਾਵਰ ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਆ ਨ ਦੂਜਾ, ਜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਤਬ ਬਾਂਧ ਮੁਤ ਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ, ਜਾ ਬੇ ਕੇ ਰਗਮ ਪਾਰ, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰ ਕੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ, ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਤਬ ਸੇ ਸਖਤ ਕਹੋ ਕੇ ਠਾਏ, ਜਬ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰਹੇ, ਤਾ ਕਉ ਡਰ ਕਉ ਡਰੈ, ਆਪਨ ਜਲਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਗਮ ਪਾਰ, ਉਨਾਸੀ ਸੁਗਾ ਪਨਾਸਨ, ਤਾ ਜਨਮਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਬਿਨਾਸਨ, ਜਾ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ, ਜਬ ਅਭਗੇਤਾ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ, ਤਬ ਚਿਦਰ ਗੋਤ ਕੇ ਭੂਲ ਲੇਖਾ, ਜਬ ਨਾ ਨਿਰੰਜਣ ਗੋਚਰ ਗਾਦ ਹੈ, ਤਾ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰ ਜਾ, ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਤੋਤਾ, ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤੋਤਾ, ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ, ਤੈ ਕੌਣ ਕੋ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਵਮਾਨ, ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਤੈ ਸ਼ਦ ਸਿਰ ਲਗਤ ਕੋ ਕੀਸ, ਜੈ ਜੋ ਸੂਪੀ ਜੋ ਸੰਸਮਾ ਵਹਿ, ਤੈ ਕਿਹ ਭੂ ਕੰਮ ਤ੍ਰਿਤਾ ਵਹਿ, ਕਰਨ ਗਰਾਉਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਗਾ ਨਾ ਸ਼ਮਾਰ, ਜਾ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਣਾਈ, ਤਾ ਕੰਮ ਬਾਮਿਤ ਸੁਰ ਪਾਈ, ਜੈ ਸਰਬਗਲਾ ਪੇ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੈ ਬੇਤੇ ਕਾਂ ਕੋ ਜੀਨ, ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਔਰ ਧਾਰੇ, ਤੋ ਸਗਨ ਆਪ ਸਗਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੈ ਆਪਨ ਊਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇਰਾ, ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਜੈ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਾ ਜਾਨੋ ਆਪ, ਜੈ ਆਸ਼ਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪੇ ਸਮਾਇ, ਓਂਕੇ ਬਿਆਵਤ ਮਾਇਆ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਦੇਹ ਤੇ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਜੈ ਏਕ ਭਵੰਤਾ, ਤੈ ਕੌਣ ਚਿੰਤ ਕੇ ਲਾਗੇ ਚਿੰਤਾ, ਜੈ ਆਪਣਾ ਪਤਿਆਰਾ, ਤੈ ਕੌਣ ਕਦੇ ਕਉ ਸੁਣੇ ਹਾਰਾ, ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਉਚਤੇ ਉਚਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਜੈ ਆਪ ਰਜੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕਿਨੋ ਬਸਤਾਰ, ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਪਈ ਕਹਾਵਤ, ਕੋ ਨਰ ਕੋ ਸੁਭ ਬਿਸ਼ਾਵਤ, ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਪਰਮ ਵੈਪਾਰ, ਦੋਖ ਸੋ ਮਾਨ ਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ, आपन खेलो आप कर देख खेल संकोच तो नानक कह जय अवगत भगत आप जय पसरे प्रशासन प्रताप दो पाका पेता नहीं उनकी सुबह उन बनी आपे कौत करे अंच हो जे आपे रस भोगन जो जिस भाव है तेसे आपन ना लावे जिस पावे ते खेल खिलावे बेशमार अथा अगन अतो अगंत अतोल बेशमार था अगंत तोल

के गुण गाऊं वस पारी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निरकर पेक सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अंत्या गोतरंग सिदा की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सास अगन सागर तरो हर धन के पर लो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम गुरु सहज आनंद सास परमानंद नरगनवार उदारो जी ओ गुण गोबिंद अमृत रस पी ओ चेच तो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दोह भजन पूरन कृपाल सिमर निमना बारंबार नान जी का ए आधार उत्तम सलो साध के भजन अमलीक लार रतन संत कुमार उदार आप तरे लोके निस्ता सफल जिन सफलता का संग हो जाके मन लागा रंग जय जय शब्द नाद वाजय सोन सोन करे प्रभु गा जय पाठ बाल मात के माथे नान गुदरे तिन के साथ है सरण जो सब सरणी आए कर कृपा प्रा मलाए मिटगे बैर पहे सबरेन अमर नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण होई सेवकी सेवाल जंजाल बेकार तेरा ते राम ना सुरन ना कहते कर प्रसाद आप तारी नान ने भीखे बमारी प्राकृत करो सदमीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्विशाता की पूर्ण होए प्रदान पुरपर सब लोए साव दे उज पाए स्थान बोर न होवे आमन जान हर तन काट जल जन सोए नान जे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बोध ज्ञान सर्ब ते सिद्ध विद्या तप जो प्रत्यान ज्ञान सेठ उत्तम शनान चार बदार कल प्रगा सब के मसल ते उदास सुंदर जता बेता समदृष्टि दिटेता ए पलते जन के मोहपन गुरु नानक नाम बचन मन सुन ए नदान जपै मन को सब

संग मिटे संत कृपात है जमते छूट जाके मस्त कर्म प्रभ पाए साध सन नानक ते आए जिस मन बसे सुन।

नाम सुखमणि सब ते यूच ताकि शोभा बणी नानके गुण नाम सुखमणि सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमणि साहब दे पाठ संगत रूप विच आप जी ने सरबत संगतां ने श्रवण कीते ने। परिवारों का धन्यवाद जिन्हों को जिन्हों वालों ये सेवा है। पर मैं बेनती करा कि सुखमणि साहब का पाठ सिख ने आप भी करना है। संगत रूप में बहुत अच्छा तुसीं करवाया, बड़ी कृपा ते संगतां नूं तुसीं गुरु नाल जोड़िया। पर जे सिख का अपना नितनेम नहीं, क्षमा करना, असीं गुरु ग्रंथ साहब के बीड़ां तों सरूपां तों बहुत झगड़ा रौला पा रहे हैं। तो मैं बेनती करना चाहना सिख संगतां नूं, किन्नियां क संगतां जिन्हां दे घर गुरु ग्रंथ साहब का पोथियां ते प्रकाश ते बाणी पढ़दे ने। जदों गुरम प्यारे असी गुरबाणी नाल घरां दे विच कोई साडे परवाह नहीं, घरां च असी बाणी पढ़दे नहीं, नेतनेम साडा नहीं रह गया। और खिमा करना, गुरु ग्रंथ साहब दे सरूप बड़ी श्रद्धा भावना ते प्यार दे नाल साडे पास पहुंचे ने। और इन्हां चीज़ां दा विवाद कुछ लोग कर रहे ने। तुहानूं बेनती, सानूं ते खुश होकर भज के आना चाहिए सी वी गुरु पातशाह साडे देश च आ रहे ने, साडे शहर च आ रहे ने। पर खिमा करना, इन्हां चीज़ां नूं लैके असी आउण वाली जनरेशन जिहड़ी साडी, इहनूं असी दूर कर रहे गुरु तो। बहुत सारा बबाल इन्ना पजारियों ने सानू डराया कि सिख गुरु ग्रंथ साहब नूं हाथ लाउणों भी डरदा। हर एक चीज़ पढ़ लैंदा, हर एक चीज़ कर लैंदा, पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पढ़नों डरदा भी मैं पाप ना कर बैठा। खिमा करना, जिन्ना चिर बाणी पढ़ी ना गई उन्ना चिर समझ नहीं पैनी। मेरी बेनती तुहानूं सारिआं नूं, जिथे अज सुखमणि साहब का पाठ संगत रूप में तुसीं कीता, उत्थे मेरी बेनती है कि सारिआं दे घरां विच सुखमणि साहब का पाठ होवे। हर एक परिवार विच बाणी पढ़ी जावे, नेतरेम होवे, गुरु चरणा नाल बंदा जुड़े और इस बाणी नूं असीं समझण दा यतन करिए। मेरी बेनती सारिआं नूं, जिन्हां ने अज कीता उन्हां दा धन्नवाद, जिन्हां नहीं कीते कोशिश करो कि आपां नेतरेम शुरू करिए। सब दा धन्नवाद, गुरु कृपा करे सब नूं चढ़दियां कला बख्शन। आओ अरदास वास्ते सावधान होइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

कबीर सोई मारिया जह मुए सुख होए, भलो भलो सब को कह बुरो ना मान कोय। कबीर राती होवे कारिया कारे उबे जंत, लै फाहे उठ धावते जे जान मारे भगवंत।

जाय। मार्ग मोति बीतरे अंधा निकस्यो आए, ज्योत बिना जगदीश की जगत अलंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का पजियो पूत कमाले, हर का स्मरण छाड़ कै कर ले आया माल।

कवण सो अखर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हौं करी, जित वस आवै कंत। निवण सो अखर खवण गुण,

मत हुदी हुए याना ताण हुदे हुए निताण अनहुदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। सवैये श्री मुखवाक महला पंजवां।

सगल घट रहो ब्यापे ब्यापत देखिए जगत जान कौन तेरी गत सर्ब की रख्या कर।

सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं उचे ते उचो जानी जय प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बड़ानं।

रंचक रेत खेत तन निर्मित दुर्लभ देह सवार तरी। खान पान सोदे सुख पुंचत।

खानम सांगना को दृष्ट निहारो कोट ना योट ना कोस ना छोटा दीन दयाल पुरख प्रभ पूर्ण

मित्र न पुत्र कलतर साजन सख, उल्टत जात बिरख की छारों, दीन दयाल पुरख प्रभ पूर्ण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो।

तावन पावन कूरक मावन एबिद करत औद तन जारी कर्म धर्म संजम सोचने मा चंचल सांग सगल बिदहारी।

ब्रह्मादिक सेव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख तरण गगन यावत फुन तावत।

प्रे प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताकै दर्श समावत तिसै त्याग आन को जाचै मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुखदाता नानक दास तुझे समझावत।

गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर।

गावै कपलाद आद जोगेसर अपरंपर अवतार वरो गावै जमदगन परस रामेसर कर कुठार रग तेज हरिओ।

गावै गुण शेष सहस जि बारस आद अंत लिव लागत ना। गावै गुण महादेव बैरागी

सतजुग तै माणियो छलियो बलबावन पायो त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्रसैन कौ राज अपै भगतां जन दियो।

नित नवतन जग छायो। गुण गावे पायाल भगत नागा दुपयंगम, महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम। गुण गावै मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार्य, ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुक्म सब सृष्ट सुवारी।

रहे जगत्र जल पदम विचार कल्पतर रोग विदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिविद तेरा एक लिवतार।

हर हर इंद्र ससमान आत्मावंत गियान जानी अकल गत गुर प्रवान जाके दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध सुथान पहर सील सुनाहो शक्त बिदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार दृष्ट तरत तम हरन दैन अगपा प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतिपालन आत्म रत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लाग्या सो पै तर गुर जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करै सदा अकलिव रहै करण समिचा चारा द्रुम स्पूर ज्यो निवै खवै कस बिमल बिचारा।

सिमरन खेतर यवर त्रु मंडल नारदात प्रहलाद वरा ससियर यर सूर नाम उलासै सैल लोजन उदरिया सोई नाम अचल भगता पवतारन अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुतरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अम्बरीक पव जल तरिया

सतगुरु तिलक सर्ब इच्छन पायो। चरण ता परस के अथ चरण गुर अमर पवल रहै, हाथ ता परस के अथ हाथ लगे गुर अमर पया। जी ता परस के अथ जी गुर अमर पणिजै, नैन ता परस के अथ नयन गुर अमर पखिजै। श्रवण ता परस के अथ श्रवण गुर अमर सुनिजै। सके अथ सो हियो जित ही बसै, गुर अमरदास निज जगत पेत। सके अथ सो सिर जालप भणै, जो सिर निवै गुर अमर नित। ते नर दुख ना भुख ते नर नितन कहियै, ते नर सोख न हुए ते नर से अंत ना लईऐ।

ते नर उथप बिथपै। सुख लहे ते नर संसार मह अपै पट रिप मद तिह सके अथ ते नर जल प्रणै। गुरु अमरदास सुप्रसन्न जे तैपड़ो एक मंत्रियो एक कर एक पछाण्यो नयन बैन में एक एक दो ठाए ना जाण्यो सुपन एक प्रतख एक एक समैलीनो तीस एक यार पंज सिद्ध पैतीस ना खीणो एको ज लाख लखो अलख है एक एक कर वरनियो

जाल पाप दारथ इतड़े, गुरु अमरदास डिठै मिले। सच नाम करतार सुदृढ़, नानक संगरियो ताते अंगद लहना प्रगट, तास चरणा लिव रहियो। तित कुल गुरु अमरदास, आसा निवास तास गुण कवण बखाणो। जो गुण अलख अगम, तिना गुणयंत न जाणो।

त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कलातार जग में परवर्यो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जाह कहता परपूर शब्द दीपक दीपाय जय सिखा संगरियो तत हर चरण मिलायो।

अगम्य लख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो। गुरु अमरदास कारण करण जिव तू रखै तिवर हो। पिखे के गुर ज्ञान र ध्यान तत् स्यु तत् मिलावै। सच सच जानियै इक चितै लिव लावै। काम क्रोध वस करै पवन उडंत न तावै। निरंकार कै वसै देस हुक्म बुझ विचार पावै। कलमाहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो। गुर मिलियो सोए पिखाक है सहज रंग दर्शन दियो। रहयो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे।

पैर समाद सुनाहु ज्ञान आसन चढ़यो त्रम तनख कर गहयो भगत सीला सर लड़यो पै निरपो हर अटल मन शब्द गुरने जा गड़यो।

चाहक तत समत सरे। कव कल ठाकुर हरदास तने, गुर रामदास सर अपार परे। छुटत प्रवाह में अमरा पद, अमृत सरोवर सद परया। ते पीवै संत करे मन मज्जन, पुब जिन्हों सेवा करिया।

संतोख सरोवर बसै, अमिय रस रसन प्रकाशै, मिलत सात उपजै, दुरत दूरंतर नासै।

पायो जग जतो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम निद नाम निदान रिद सिद्धता की दासी सहज स्रो

सेज सदा सहज चावान संतोख सराचो सदाशील सन्नाहो सो है इंगुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगादबो है आजोनियो पाल अम्ल सतगुर संग निवास गुर राम दास कलचरै तो सहज सरोवर बास गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हरदय निवासै

जाने जनक सोए जन जानिया उन मन रत तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अका

जाको देखत दरिद्र जावै, नाम सुन निधान पावै, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो वै जियो।

विचार। काठो श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जन परसिया, से पास परेत सुर नर पे।

इंगुर के बचन सत जी धारो, मानस जन्म दे निस्तारो। गुर जहाज केवट गुरु, गुर बिन त्रया ना कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाइए, गुर बिन मुक्त ना होए। गुरु नानक निकट बसै बनवारी,

मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते।

तारण तरणंग प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कै एक पढ़ै सुनै गावै प्रभाते करै स्नान इसनान करै प्रभात सुध मन गुर पूजा बिद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग।

तु ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। पीत बसन कुंद दसन प्रया सहत कंठ माल मुक्त शीस मोर पंख चाहे जियो। बे वजीर बड़े तीर तमे अंग लख गम खेल किया अपने चाहे जियो। अकथ कथा कथी न जाए तीन लो करे असमाय सुता सिद्ध रूप धरियो सहन कैसा है जियो। सत साच श्रीनिवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो। बल्ला चलन सबल मलन भगत फलन काल कोरक नय कलंक बजी डंक चढ़ दल रविंद जियो। राम रवण दुरत दवन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही दे वाद देव सहस मुख फनिंद जियो। जरम करम मच कछ हो बरा जमुना कै कूल खेल खेलियो जिन गिंद जियो। नाम सार ही है तार तज विकार मन गई अंद। सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो। श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। गुर कहिया मान निज निधान सच जान मंत्र एह निस बासुर होए कल्याण लहे परमगत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन सिउ छाड़ तोह होमे का फंद काट साध संग रत जियो। देह गेहो त्रे स्नेहो चित बिलास जगते हो चरण कमल सदा सियो दृढ़ता कर मत जियो।

जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आपे चितवै आपे चंद सूर प्रगासा, आपे जल आपे थल थम्मण आपे किया खट खट बासा, आपे नर आपे फुणनारी आपे सार आपे पासा, गुरमुख संगत सब विचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पयाल पूर रहिया, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना,

वाह गुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद आद जिस कोय न जाने, सेव बिरंच तर ध्यान नितै जिस बेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर ने दूसर कोई,

कलयुग दुरत दूर कर बेको, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाकु मन ध्यान तरै फिरत, सगल जुग कबहु का को पावे आत्म प्रगास को। वेद बाणी साहित बिरंच जस गावै, जाको शिव मुन गहना तजात कबलास को।

देखत दर्स भटक प्रम पज्जत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदायत लुभित यल समूह जो कुसुम सुबासे विद्यमान गुरियाप थप्यो थेरे साचो तख्त गुरु रामदासे तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सिमरत फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिद्ध अर सिद्ध ना छोड़े साथ

अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत। सुरय असुरा नर गण गंतर्ब खोजंत फिरे, अविनाशी अचल अजूनी, संपो पुरुषोत्तम अपार परे।

मिट्यो जो खिणंग कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल पट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो जय सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जय सतगुर सिमरंत जी की तबत मिटावे जय सतगुर।

जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करतन छोड़ियो पास, ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नास।

मुहमल बिवस्कियो काम गे केस पछाड़ो काम क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों चाड़ो।

ना। खेल गुड़ो कियो हर राय, संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो। आजोनी संपवियो सो जस कल कवीन बखाण्यो।

गुरु अर्जन कल उछरै तैराज जोग रस जान्यो। पै नृपो मान्यो लाख मैं लख लखायो अगम गोचर गत गभीर सतगुर परचायो गुर परचय परवान है राज मैं जो कमायो तन तन गुर तन पर सर सुपर परायो।

पूरी पड़ी जोत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमरत छतर गुर रामे दियो।

पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुखर हो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लग बितरो तेह जन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रयन बास जाखो हित नाम स्यों परम तीत परमेश्वर कै रंग रंगो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यों अपर परम पर पुरख स्यों प्रेम लागो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सरब मैं अर्जुन गुर भगत कै हेठ पाए रहियो मिल राम स्यों अंत न पावत देव सब मुनीन्द्र महाशिव जोग करी फुन वेद बिरंच विचार रहियो हर जाप न छाडो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत

फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। कल समुद्र पय रूप प्रगट हर नामी उदारण, बसै संत दिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार तास बिन वरना कोई, मन बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण।

मिल नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास हर पह गयो हर बंश जगत जस संजरो सो कवन कह श्री गुरुमयो। देवपुरी मैं गयो आ परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो रहस कियो सुर देव तुहे जस जय जय जंपे असुर गुए ते पाग पाप तिन पीतर कंपे काटे सो पाप तिन नरोके गुरु रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सब गुरु प्रसाद सलोक वारां ते वधीक महला पहला उतंगी पायो हरी गहरी गंभीरी ससुड़ सुहिया केवकरी निवण ना जाय थड़ी गच जी लगा गिड़बड़ी सखिया तौल हरी

वस्त सिंह कै तीचै व्यापार दोही दिचै दुर्जना मित्रां को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लोह मंदे विचार तन मन दीजै सज्जना ऐसा संसार तिस सौ न्योना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी कर बुझिया तिना बटों कुरबान जे तू तारू पाण ताहु पुछ तड़न कल ताहु करे सुजान वन्या इन्नी कपरी चढ़ चखड़ियो हाड़ लहरी वहन लखे श्री सतगुर सिंह लाए बेड़े डुबण लाए पौ नानक दुनिया कैसी होई सालक मित न रहो कोई भाई बंदी है चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया है करके हुए करेन गल्ला पिटन सिरखो हेन ना लैन अर करन समाए नानक तिन बलिहारै जाए।

नानक लगी तुर मरै जीवन नाही तान, छूटै सेती जो मरै लगी सा परवान। जिसनो लाए तिस लगै लगी ता परवान, परम पै कामना निकलै लाया तिन सुजान। पांडा तो वै कौन जे कच्चा साजया, था तू पंजर लाए कूड़ा पाजया। पांडा यान ग्रास जां तिस पावसी, परम जोत जा गाए वाजा वावसी। मनो जे अंदे कूप कहया बिरद न जाननी, मन अंदे उंदे कवल दिसन खरे करूप। एक कह जानन कहया बुझन ते नर सुगड़ सुरूप। एक न नाद न वेद न गी रस, रस कस न जानंत। एक न सिद्ध न बुद्ध न अकल, सर अखर का पियो नाल हंत। नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गिरब करंत। सो ब्राह्मण जो बिंदा ब्रह्म, जप तप संजम गमावै करम। सील संतोख का रखै धर्म, बंधन तोड़ै होवै मुक्त। सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खतरी, सो जो कर्मा का सूर पुण दान का करै शरीर। खेत पछाण बीजै दान, सो खतरी दरगा परवान। लभ लोभ जकूड़ कमावै, अपना कीता आपै पावै। तन न तपाए तनूर ज्यों, बालन हड़ना बाल। सिर पैरी क्या फेड़िया, अंदर फिरी समाल। सबनी कट्टी सौ वसै, साबिन घटना कोय। नानक ते सुहागनी जिना गुरमुख प्रगट होय। जौ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जाय, सिर दीजै कान न की जाय। नाल किराड़ा दोस्ती कूड़ै कूड़ी पाए, मरना जापै मुलिया आवै कितै थाए। ज्ञान हीन अज्ञान पूजा, दवरतावा पाओ दूजा। गुरु बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान, सच बिन साखी मूलो ना बाकी। माणु कल्लै उठी चलै, साधना ही इवे ही गल्लै। राम चुरै दल मेल वै, यंत्र बल अधिकार। बंदर की सेना सेवियै, मन तन जो जय पार। सीता लै गया दैसरो, लक्ष्मण मोह सराप। नानक करता करनहार, कर वेखै था प्यो थाप। मन मैं चूरै रामचंद, सीता लक्ष्मण जोग। हनुमंतरिया राधिया, आया कर संजोग। भूला दैत न समझई, तिन प्रभ किए काम। नानक विपुर वाहो सो, किरत न मिटई राम। लाहौर सहर जहर कहर, सवा पहर महला तीजा। लाहौर सहर अमृतसर, सिस्ती दा घर महला पहला। उदो साहे क्या निशानी, तोड़ ना आवै अन्नी। उदासी करे वुठी कुड़ी, रनी तमी सती रनी। करे सियापा रोवन कुड़ी कमी, जो ले वै सो देवै नाई। खट्टे दम सहमी, पब्बर तू हरियावला। कवला कंचन वन कै दुखड़ा सड़ियो, हे काली होइया देहुरी। नानक मैथन भंग, जाना पानी तालहा। जाना पानी नालहा, जैसे ती मेरा संग। जित डिठै तन परफड़े, चिड़ा चवगण वन। रज ना कोई जीव्या, पोच ना चलया कोय। ज्ञानी जीवै सदा सदा, सुरती ही पत होए। सरफै सरफै सदा सदा, वै गई विहाए। नानक किसनों आखिए, वन पुछिया ही लै जाए।

जन नानक तिस बलहारणे जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नावे जांपर जाए नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पुछताहे चिंता तावत रह गए ता मन पया आनंद गुर प्रसादी बूझी है सातन सुती निचिंद जिनको पूर्व लिखिया तिना भेटिया गुर गोबिंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद सतगुर सेवने अपना गुर शब्दी विचार सतगुर का पाना मन लहन हर नाम रखे और तार एथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द संजाप दे तित साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर परम प्यार जम काल नेड़ न आवई आप बख्शे करतार नानक नाम रते से तनवंत है न तनवंत है निर्धन होर संसार जानकी टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर ना ठाओ गुरमती नाव मन वसे सहजे सहज समाओ वड़भागी नाम त्याया एन सलागा पाओ जन नानक मंगे धूड़ तेन हो सद कुरबाने जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार एह मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंतिवार बिन हर शांत न आवई किस आगे करी पुकार वड़भागी सतगुर पाया बूझया ब्रह्म विचार तिसन अग्न सा बुझ गई जन नानक हर और तार असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारा वार हर कृपा करके बख्शल हो वो पापी बड गुनहगार हर ज्यो लेखे वार न आवई तू बख्श मिला बनहार गोर तुठे हर प्रमे लिया सब किलविक कट विकार जिना हर हर नाम त्याया जन नानक तन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण ने चल पाए गुरमुख नाम त्याए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लभाना नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहाना मनमुख नाम न चेते ओ तेग जीवन तेग वास जिसदा दिता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुण तास ए मन शब्दन फेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दुहागणे आवन जान मुयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम और तारिया हर हृदय कमल परगास सतगुर सेवन अपना हो सद बलिहारी तास नानक तेन

मान वस सदा रह उधार, तिसना बूझे तप्त होए हर के नाए प्यार, नानक गुरमुख पाई है हरि अपनी कृपा तार, बिन शब्द जागत भर लिया कहना कछु न जाए, हर रखे से उबरे शब्द रहे लिवलाए, नानक करता सब कुछ जानदा जिन रखी बणत बनाए, होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण, बिख माया मोह ना मिटई विच हो मैं आवन जान, सतगुर मिलिया मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान, जिना हर हर प्रभु सेविया जन नानक सद कुरबान, माया मोह बो चत बधे बो आसा लोभ विकार, मन मुख अस्तर ना थिए मर बिन सजाए खनवार, बड़ भाग होवे सतगुर मिले हो मैं तजे विकार, हर नामा जप सुख पाया जन नानक शब्द विचार, बिन सतगुर भगत न हो वही नाम न ना लगे प्यार, जन नानक नाम राध्या गुर कहत प्यार, लोभी का वैसाओ न की जय जे का पार वसाए, अंत काल तिथे तो है जिथे हाथ न पाए, मन मुख से ती संग करे मोह कालक दाग लगाए, मुंह काले तन लोबिया जासन जन्म गवाए, सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम बसे मन आए, जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए, तोर हर प्रभ करते लिखिया सुमेटना ना जाए, जियो पिंड सब ते सदा प्रतिपाल करे हर राय, चुगल निंदक भुखे रोल मुए इना हाथ ना किथा उपाए, बाहर पाखंड सब कर्म कर है मन हृदय कपट कमाए, खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलो आए, नानक की प्रभ बेनती हर पावे बख्श मिलाए।

मानव कमला रगड़े लुजै, गुरमुख होए ते सब कुछ सूजै, नानक गुरमुख मन सो लुजै, जिना सतगुर पुरख ना से बियो शब्द ना कीतो विचार। ओए मानस जून न आखियन पशु टोर गवार, उना अंतर ज्ञान न ध्यान है हर सौ प्रीत न प्यार। मन मुख मुहे विकार मह मर जम मह वारो वार, जीव ध्यानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उधार। नानक गुरमुख सोहणे तित सच दरबार, हर मंदिर हर साजिया हर वसे जिस नाल, गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदिर

जियो पिंड सब तिसका सब कुछ तिसके पास वैन बोलिया सब कुछ जानदा कि सागे की चे अरदास नानक कट कट एको वर्तदा शब्द करे परगास नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब पर फड़े सब जग हरिया भल होए शब्द सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम न विसरे जिन सिरिया सब गोए नानक तेना बसंत है जिन गुरमुख वस्या मन सोए हर बुठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होए वडड़े झल चुलंबले ना बना लइए केस ना लइए परमेसर भन्नण करन समरथ हर हट पी तू तू कर बोले बली बाण साहब सदा हदूर है क्या ऊची करे पुकार जन जल तो पाए हर रंग किया तिसे बिटो कुरबान आप छोड़े ता सौ मिले सच्चा हो विचार होमे फिका बोलना बोझ न सके कार वण तिरण त्रिपवन तुझे ते आएदा आंदन

नानक घर बैठिया जोग पाइए सतगुर के उपदेश चारे कुंडा जे पवे वेद पढ़े जुग चार नानक साचा पेटे हर मन वसे पावे मोख द्वार नानक हुकुम वरते खसम का मत पवई फिरे चल चेत मनमुख सौ कर दोस्ती सोके पुछे मित गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चेत जमण मरण का मूल कटिए ता सुख हो भी मित भुलिया आप समझ आई सी जा को

नदर करे जैसे अपनी दिस लाई प्यार। सतगुर की सेवै लग्या भौजल दर संसार, मन चिंदिया फल पाई से अंतर विवेक विचार।

जाय। जमण मरण न चुकई हम मैं कर्म कमाई। गुर सरनाई उबरे नानक ले छड़ाई। सत गुर पुरखर ध्याई दा सत संगत सत गुर भाई। सत संगत सत गुर सेवंदे हर मेले गुर मिलाई।

अष्ट पुत्र भैरव के, गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक अलाप है, संग रागनी पांचो थाप है, गौंड करी अरदेव गंधारी, गंधारी से होते उचारी, तनाश्री ए पांचो गाई, माल राग कौशक संग लाई,

अष्ट पुत्र दीपके जना सब मिल श्री राघव गाव है, पांचो संग बरंगन लाव है, बैरारी करनाटी धरी

गोंड कुंभ हमीर खाष्टम मेघ राघवे गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी धुनी पुन गावे आसा गुनगुनी।

0: फिर तू सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। इतों के गुरु घर के वजीरां दा, सेवादारां दा, प्रबंधक कमेटी का और गुरु घर के रागी साहबान भाई साहब भाई हरमनदीप सिंह जी और गुरु घर के ढाडी जथियां दा सारयां दा जिन्हां बहुत ज़्यादा प्यार दिता सारयां दा तहे दिल तों धन्यवाद है। असीस बख्शो जी अगले समय वास्ते सत्कारयोग सैकटरी साहब पासों जो प्रोग्राम है सरवण करो। बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
1: गुरु सवारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सत्कारयोग भाई दिलबाग सिंह जी के जथे का जो आप जी के नाल गुरबाणी कीर्तन की सांझ पा रहे सन। अज दे दीवान जो हैं भाई तारू सिंह जी की शहीदी समर्पित हैं जो कि पिछे लंघ के गई है 16 तरीक न। भाई तारू सिंह जी बारे आप सब भली भांत जानते हो कि उन्होंने शहीदी किस तरह हुई। मेन चीज़ कि उन्होंने सिख वैल्यूज जिहड़ियां सन उन्होंने कायम रखते हुए अपने सिर की खोपरी लवा के शहीदी दी। सो सानू एक सिक्ख्या लैनी चाहिए है यहो जे दिन के उत्तों कि जो साढ़े चिन्ह हैं सिखी दे उन्हां दी वैल्यू किन्नी है। यह दिहाड़े समर्पित करन दा मनाउण दा इहो ही कारण याद करन दा इन्हां शहीदां नूं हुंदा कि असीं उन्हां तों अपने जीवन की सिक्ख्या लै सकीए। सो सिख वैल्यूज़ की किन्नी कदरां कीमतां हन वो भाई तारू सिंह की शहीदी का जो इतिहास है आप जी ने जरूर पढ़ना जे नहीं पता था तो सिर्फ तो सिर्फ एक केसा की बेअदबी ना होण करके उस तरह भी सज़ा कोई मिल सकती सी पर उन्होंने जो है वो नहीं मंजूर की कि

गुरु की संगत बड़ा सौखा शब्द है। आप कृपा करो जदों, क्योंकि असी शरीर करके इत्थे बैठे सारे हैं, पर मन करके कोई अपने जॉब ते है, कोई अपने बिजनेस दे विच है, कोई इंडिया बैठा है। सतगुरु जी कहिंदे ने हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे। जदों कीर्तन की गल की गुरु की संगत वालों, यह हमेशा होंदा कि कीर्तन वाले कीर्तन करते सानू समझ नहीं आती, पर सतगुरु जी कहिंदे ने हर कीर्तन सुने, कीर्तन वाले सुनने वाले की गल पहला की है, गाने वाले की गल बाद की। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दूख निकट नहीं आवे। जिहड़ा बंदा मन की एकाग्रता दे नाल कीर्तन सुनदा है, नाल गायन करदा है, गुरु साहब कहिंदे दुख लगन की गल बहुत दूर की, दुख लागे नहीं आउंदा। सारे कृपा करियो उच्ची आवाज दे विच नाल गायन करन दा जतन करियो, क्योंकि गुरु की संगत असी दुनियावी गल्लां सारी दिहाड़ी कड़ी आईए ना, किसी नाल बहस करनी होवे ते एक एक दो दो घंटे असी किसी नूं गल नहीं करन दिंदे, फिल्म देखनी होवे तीन तीन घंटे अख नहीं चपकदे, पर जदों गुरु की गल आउंदी है, महाराज कहिंदे ने बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया।

0: गुरु साहिब कृपा करन, साडे सारयां दीआं हाजरियां प्रवान करन, साडा गाविआ तुहाडा सुणिआ होइआ सतगुरु जी थाए पाउण, गुरु घर विच सानूं बहिण दी सोझी बख्शिश करन। आप सरबत संगत दा धन्नवाद, आप सरबत संगत ने एकाग्रता बख्शिश कीती है, क्योंकि गुरु की संगत कीर्तन जिहड़ा है ना, सतगुरां ने जदों सत संगत की गल कीती है उदों सतगुरां ने पंजवें पातशाह जी ने सुखमनी साहिब रोज पढ़दे हैं, प्रभ की औस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। जदों भी सत संगत दे विच आईए इसे तरह बैठिया करिए, मन बिरतियां एकाग्र करके कीर्तन नाल गायन करन दा जतन करिया करो, क्योंकि गुरु घर दे विच आउणा साडा मत्था टेकणा मकसद नहीं, बाणी सुननी नाल बाणी गायन करनी कि इहदे अर्थ की हन, इहदे विचों सतगुरु जी सानूं की उपदेश दे रहे हन। नहीं तो गुरु की संगत साडी, असीं गुरद्वारा साहिब आउने आ एतवार, लंगरां दा लंगर टेस्ट करन आउने हाँ कि पकौड़े वधिया बने ही, अज आ वधिया बने ही, पर गुरु की गल कोई नहीं लैके जांदा। गुरु की संगत आ माफ़ी मंग के गल कहने, क्योंकि तुसी सारे सियाने पुरख सूझवान बैठे हो, पर असी कनेडा आए पर साडे पकौड़े भी साडे पिछे कनेडा आ गए। गुरु की संगत लंगर हाल दे विच पैर रखने जगह नहीं है, पर जिथे गुरु की गल हो रही है ना उथे असी बैठना साडे वास्ते बड़ा मुश्किल है। राज करेगा खालसा दीआं गल्लां करन वाली साडी कौम सिर्फ चाह पकौड़िआं तक सीमित रह गई। गुरु साहिब सारयां नूं सोझी बख्शिश करन, सानूं बाणी सुणन दा बाणी पढ़न दा बल बख्शिश करन। आओ अगला समां सिकटरी साहिब जी पासों सरवण करो, दासरिआं वल्लों आप जी दी शान बोलदिआं इक नहीं बेअंत भुल्लां हो जाणीआं सुभाविक हन। गुरु की संगत कुकर दा काम हुंदा है होका देणा, असीं गुरु रामदास जी दे दर दे कुत्ते हाँ, साडा काम है भौंकणा, असीं आप जी दी हमेशा चरणां दी सेवा करनी है, जो सानू सतगुरां ने हुक्म लाया उहदा ही उपदेश देना है, मनना ना मनना ये आपो अपनी मर्जी हुंदी है, पर साडियां गलतियां साडी झोली पा दिओ। बाणी पढ़दियां होईआं बेअंत भुल्लां दी माफ़ी, गज वज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
1: गुरु साहिब साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही धन्यवादी हाँ भाई हरमनदीप सिंह जी, खजूर जी लागी श्री दरबार साहब अमृतसर, जो आप जी नाल गुरबाणी कीर्तन की सांझ पा रहे सन। भाई साहब सवेर ते शाम के दीवाना विच भी हाजरियां भरते हैं गुरद्वारा साहब विखे, आप ही हाजरियां भर के इन्हां पासों कीर्तन सरवण करके तो अपने जीवन सफला करिया करो जी। इन्हां तो बाद हमेशा की तरह जो कथा का समा है, गुरशब्द की विचार का समा है, वह भाई गुरशरण सिंह जी 11:45 तक जो है वह आप जी के नाल गुरशब्द की विचार की सांझ पाउणगे। तो गुरद्वार साहब दे विच जो एक दो अपनियां अनाउंसमेंट सन मैं आप जी नाल सांझियां करनियां चाहुंदा, सूचनावां समझ लो कि सब तो पहला तो जिहड़ा हर साल की तरह इस साल भी जो बच्चों का गुरमत कैंप है वह 17 अगस्त तो 22 अगस्त तक वो होण जा रहा, उहदे विच काफ़ी तो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हुण जो अपने बच्चों रजिस्टर करने वास्ते साढ़े को हार्ड कॉपीज फॉर्म के रूप में आईया हैं, वह भी बाहरों डेस्क के उत्तों अपनी कापी लैके फॉर्म की कापी लैके तो अपने बच्चों रजिस्टर कर सकते हो। बच्चों रजिस्टर करने की जो एज है वह 6 साल तो लग के 15 साल के दरम्यान होनी चाहिए है, तो वो वास्ते बहुत थोड़े साढ़े को गुंजाइश रह गई हूँ, तो तुसी जिनी जल्दी वो रजिस्टर करोगे उन्ना ही सानू प्रबंध करने लई होर समा मिल जाएगा। तो नाल दी नाल उस कैंप दे विच सानू वलंटियर भी चाहिए हैं, जे किसी बच्चे ने किसी वीर भैन ने जो वलंटियर सेवा करनी चाहते हो भी डेस्क दे उत्ते अपना नाम है जो वह दे देन। तो इस तरह गुरद्वारा साहब दे विच हफ्ते दे विच जो रोजाना हफ्तावारी जो प्रोग्राम चलते हैं उन्होंने विच बुधवार शाम नूं 6 बजे तो 7 बजे तक जो कीर्तन की क्लास चलती है, तो इस ही तरह फ्राइडे नूं सवेरे 10 तो 12 बजे तक मुफ्त सेवा दी जाती किसी ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

बाकी सारिया सेवावां करेगा तो जन्म व्यर्थ ही जाएगा। अगली पंक्ति है, हर मेरा सिमरत रब ही मेरी सिमरती है, हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र, ते मेरा शास्त्र भी की है रब ही है, हर मेरा बंदप हर मेरा भाई, रब ही मेरा बंदप है रिश्तेदार है, ते रब ही मेरा की है भाई है, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता, सारा कुछ तू ही है।

अज चाड़िया बागियां नूं रोटियां खवाउंदा नित घरे सद नाले भेद दिंदा पूरा शाही सरकार दा जिहदे विच राज रहीए उसे दा ही भला कहीए इहो मर्यादा मुखी शरा दा उचारदा बागियां दी मदद दे इवज विच सुण माता किला जो लाहौर वाला वाजा इहनूं मारदा चंद को दिलां दी गल रखी तू अड़ीक माता देखी पुत तेरा केस सिर तो उतारदा पढ़ के ते कलमा ए धारू असलामी मत देख ली नमाज ए मसीत चो गुजारदा देख ली नमाज ए मसीत चो गुजारदा। गुरु प्यारे उस वेले मां दे कालजे दा रुग भरिया गया अपना ध्यान अपने पुत वल नू कर दिया पुत्रा मैं की सुन रही हां मैं की सुन रही हां ए की आखदे आ वी तेरे केस कतल करके ते तैनू नमाज पढ़ाउणगे। सतसंग जी उस वेले मां आखदी है आखदी माता पुत नू फिर अपना ध्यान भाई तारू सिंह वल नू कन्वर्ट करती है देखदी है अखां ना अखां मिलाउंदी है पुत्रा मैं तेनू 26 सालां दा मखणा ना पाल के कीता है और अज मेरी इज्जत तेरे हाथ दे विच है देखी अपने बाप दी चिट्टी पग नू दाग ना ला जी ओ पुत्रा मैनू सिर तो नंगी करके ना चलिया जावी देखी धर्म तो डिग के चार चंद छिलणा दी खातर अपना धर्म ना गवाली ते भाई तारू सिंह दी माता एक जंजे चढ़ लगे अपने 26 सालां दे गभरू पुत नू जांदी कुवार दियां कुछ सिठणियां दिंदी है जांदी कुवार दी कुछ सिखिया दिंदी है उस कविड़े दियां सतरां नू ढाडी जत्ता तुहाडे नाल इउं कहिंदी।

0: दे रहा हूं, ठीक है।
1: वाहिगुरु, वालिगे कुल आलम साहिबे सहाबा हजूरे अनवर सरवरे कायनात फखरे मजदाद दसा पातशाहियां जी दे आत्मक सरूप जोत मौजूदा गुरगद्दी दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर जुगो जुग अटल मेरे पूजे महरम मेरे रूहानी ते जिस्मानी रस्त्यां दे रहनुमा पा के मसीहा रब्बी रहमत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन पवित्र दरबार अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी सात संगत जी अपनिया रसनावां नूं करो पवित्र मन नूं लियाओ चढ़दियां कला विच अते गज वज के फतेह बुलाओ आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरां दी अपार बख्शिश होई अज वीकेंड ते रब वर्गियां संगतां दे दर्शन दारे कर रहे हां। तुसी अपने रझेव्या दे विचों कुछ पल कढ के शहनशाह दे दरबार दे विच आए हो। सतगुरु कृपा करन सब दी हाजरी गुरु महाराज अपने चरणा च प्रवान करन अपने दरों घरों गुरसिखी जीवन रहमतां दीआं दातां दे नाल साडियां झोलियां भर देण और परिवारां विच चढ़दी कला होवे तरक्कियां बख्शण कारोबारां दे विच वाधा होवे। गुरु महाराज सब चढ़दी कला गुरु सिखां दे उत्ते करे। ते सतसंगत जी आपां कुछ दिनां तों कौम दे महान योधे शहीद भाई तारू सिंह उन्हां दा जिक्र तुहाडे नाल कर रहे हां। अरदास दा तीजा पैरा है कि जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत असीस दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाईयां। बस इत्थे आपां अज रुके होए हां कि जिन्हां ने खोपरियां लवाईयां। गुरु प्यारिओ गल देखण नूं ओपरी जी लगदी है भी एड्डी किहड़ी गल आ भी सिक्खी दी खातर कौण खोपरियां लवाउंदा, सिखी की खातर कौन है वे बंद बंद कटवाउंदा। जो आप अजोके समय वाल झाती मारते भी की हो जाना सगा जे किते ओ उना दे आके लग जांदे जे मुसलमान बन भी जांदे। अज भी बतेरी दुनिया धर्म तब्दील करी फिरदी आ, बेकी हो जाना सी आउंदा होना कई बार विचार मन दे विच आउंदा ही आ भई अज भी धर्म तब्दील हो ही रहे आ थोड़े थोड़े लालचां दे बदले। तुहाडे बच्चियां नूं असीं वधीए स्कूल दे विच पढ़ा दांगे, डाक्टरी फ्री मिल जूगी, धर्म चेंज हो रहा है, इहदे विच कीड़ी गल है वी एडी उत्थे कीड़ी विपता पई सी उहनां नूं खोपर लवाउण दी, एडी कीड़ी विपता पई सी चरखड़ियां ते चढ़ण दी, एडी कीड़ी गल सी वी ओ उहनां नूं बंद बंद कटवाउण दी। की हो चलिया जे दुनिया इदां आपदियां मर्जियां करदी फिरदी आ ते जे उदों भी किते इह कुछ कर लैंदे ते शायद उह बचे रहिंदे। नहीं प्यारिओ, चार छिलणां दी खातर लालच विच आके जीना वक्री गल है पर धर्म की खातर अपने सिर कटवा देने इहदा मजा कुछ वक्रा हुंदा है। इहदा मजा आपां नहीं लै सकदे, इहदा स्वाद आपां नहीं चक्या, पर जिन्हां बजुर्गां ने चक्या अज करोड़ां की गिणती दे विच सिख संगतां अरदास करदी है करोड़ां की गिणती दे विच सवेरे ते शाम। याद करदे हो ना उन्हां मर्दां नूं, उन्हां शहीदां नूं याद कीता जांदा। गुरु प्यारिओ जिन्हां ने इस शहीदी दा स्वाद चख्या उन्हां दा इदां दा जीवन सी, उह सतगुरां वर

अमर शहीदी तो दुनिया खुश हो जाओ बलवीरा सिख जगत भी आखूगा तुर गया तो

मुन के पटांगा एदा बाण मैं कट के हिनू करांगा तर खान मैं सच जानी तू इशारा ए सुरां दे आन दा होटी मुल नहीं पैना जिंदगी गवाण दा होटी मुल नहीं